जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। दिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, 1 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। आप सभी को भी बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। जुलाई महीना जो शुरू हो गई है, नए महीना का शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को भी बधाई और मुबारकबाद बस पेश किया जा रहा है कि इस नए महीना जो है आप सभी के लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाए। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656060। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0302266611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए। और हॉलैंडीज के बीच में नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार अपना घरों में आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से तुरंत हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है एक भजन जो हमारी बहुत सी सुनने वालों बस पसंद करते हैं सुबह की वक्त सुनने के लिए। सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हरि हरन की आवाज में। और ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए और रेडियो SBS का सभी सुनने वालों के लिए और सभी जो ऐप किया है रेडियो SBS का ऐप पर उन सभी के लिए।

रेडियो एसबीएस के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो एसबीएस के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। बुधवार का दिन 1 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस के जरिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 40 साल से ज्यादा ये प्रोग्राम आप सभी भक्त प्राणियों के लिए हर सुबह बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा गणेश जी का भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा गणेश जी का भजन उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। चलिए एक सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है हरि हरन और अनुराधा पोटवल जी की आवाज में और डेनहाग की रहने वाली रेशमा, ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में मांग किया है। सुंदर भजन जो सुनना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में डेनहाग शहर की रहने वाली रेशमा, अनुराधा पोटवल और हरि हरन की आवाज में।

रंग की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई देहरादून शहर की रहने वाली रेशमा आज के प्रोग्राम में एक सुंदर भजन सुनना चाहते थे और इसी तरह से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है।

गजेंद्र शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सरे 7 बजकर प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है। चलिए प्रोग्राम में एक श्री कृष्ण भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है भजन यात्रा प्रोग्राम, जरूर सुनते ही रहना। एक भजन और होगा, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी। विक्रम हंसरा प्रोग्राम में होगा।

सुंदर सा भजन विक्रम हसरा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और सुंदर सा भजन विक्रम हसरा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और सुंदर आरती भजन गोल्डन वॉइस

चार है सभी दुखी प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए भी, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.com। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, कुमार सानू और साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपकी बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हित नगमे रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन के जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुनवालो हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-565-6060। अभिजीत औरल का प्रोग्राम है।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को एक बार फिर से सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन 1 तारीख जुलाई नए महीना का शुरुआत हो गई है। आप सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और ये नए महीना जो है आप सभी को लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो। चरित्र से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस यहाँ से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहे। तारीख नंबर है स्टूडियो का 2 2 6 6 11। तारीख नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन कानपुर का टेलीफोन नंबर, दफ्तर का तार की नंबर पर आप तार कीजिए। टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 0 3 2 5 6 5 6 6। बाहर आहिस्ता आहिस्ता काफी गर्मी मौसम होने वाले हैं, धूप ही धूप का मौसम है, तो चले तुरंत हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। फिल्म कस्मे वादे, उसी फिल्म का गाना आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बस हम स्वागत कर रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरे गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में फिल्म का नाम कस्मे वादे। 9:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है, 8 मिनट ओवर नहीं कर

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। फिल्म कस्म वादे, उसी फिल्म का गाना अभी आपने सुना किशोर एन लता जी की आवाज में। सुन वालो, नई महीना जुलाई महीना या जूली महीना शुरू हो गई है। सभी को बधाइयां, मुबारकबादियां बस पेश किया जा रहा है कि आपकी घरों में आपके लिए ये नई नई महीना जो है खुशियां ही खुशियां लाए। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना स्टूडियो के अंदर। काफी डर आने लगा है। रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी काफी सुनने वालों भी ये ऐप कर रहे हैं। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मेहदी हसन और मेहनाज की आवाज में। बहन भाई फिल्म का नाम पाकिस्तानी फिल्म है। उसी फिल्म में काफी खूबसूरत नखमे लाया गया है। एक गाना है दो साथी जीवन के और ये गाना आज के प्रोग्राम में लिम्बर्ग से इरेना ने मांग किया है। इरेना ये गाना सुनना चाहते है। इरेना लीजिए आपकी मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है दो साथी जीवन के। सुंग भाई मेहदी हसन एंड मेहनाज फ्रॉम द मूवी बहन भाई।

मेहदी हसन और मेहनाज की आवाज में फिल्म बहन भाई, पाकिस्तानी मूवी बहन भाई का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लिम्बोडक से खास तौर पर इरेना ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। इरेना श्रोमी देखिए गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की सीरीज जो पेश की गए हैं दो साथी जीवन के। चलिए अब की बार एक गाना माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है और उत्तराखंड शहर से तार किया है बीजय भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और मुझको खबर किया है कि इस वक्त सामने गर्मा गर्म कॉफी है और कॉफी के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले आपकी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0 3 2 2 6 6 6 11।

रेडियो SBS के जरिए द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रुद्रक शहर का रहने वाला विजय खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। विजय आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना बस अब की बार किशोर कुमार की आवाज में पेश होगा और रोटरडम शहर से प्रदीप खास गाना किशोर कुमार के आवाज में बस मांग किया है आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये गाना।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हमारी सुनने वालों स्टूडियो की ओर धार कर रहे हैं, काफी हंसी मजाक करते रहते हैं, क्या करें। 8:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। एक गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में पेश किया जा रहा है, और रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना ये खूबसूरत सुहाना मौसम में ये गाना बस सुनना चाहते हैं।

माइटी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। और ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में मांग करने वाली थी रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना। सबीना ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सबीना आपको भी एक खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 030-2266-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, जब आप कोई भी गाना सुनना चाहेंगे, गीत मांग करना चाहेंगे तो हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। और अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है रोटरडम शहर की रहने वाली शीला। शीला तार किया है, प्रोग्राम भी हमेशा रेडियो SBS का बस सुनते हैं, खास तौर पर हमारा प्रोग्राम जो है हमेशा फॉलो करते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद शीला, और जरूर प्रोग्राम को सुनते ही रहना। आपने गाना को मांग किया है द माइटी मुकेश की आवाज में, तो चले मिलकर आपकी मांगी हुई गाना बस सुनते हैं।

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गई। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना द माइटी मुकीस की आवाज में बस पेश की गई। आसरो बीते गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की इसलिए जो पेश की गई, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। इस वक्त हमारी बहुत सी सुनने वालों, हजारों हजारों सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। घर पर या तो जहां पर नौकरी कर रहे हैं सुनने वालों भाई, हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। ऐप द्वारा भी काफी रिएक्शंस आते हैं, तार द्वारा भी। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो रोजाना बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं। हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और काफी सुनने वालों को मालूम है कि ये प्रोग्राम पेश होते हैं हर सुबह के वक्त। और ऐसा है सुनने वालों की बहुत सी सुनने वालों है जो पुरानी नगमे बेहद पसंद करते हैं। आपको खबर किया जा रहा है इस साल मिलन सुमर फेस्टिवल द एयर्स्ट एंड द ग्रोट्स्ट मिलन सुमर फेस्टिवल टेनहाग शहर साइड पार्क में होने वाले हैं 21, 22 और 23 तारीख अगस्त यानी कि 21, 22 और 23 अगस्त द एयर्स्ट द ग्रोट्स्ट Milan Summer Festival Zuiderpark Den Haag शहर के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा मिलन होते हैं। अगर आपको मिलन में जाना है तो आपको जरूर मिलन Summer Festival Den Haag Zuiderpark में आप जाइए। सबसे बड़ा और सबसे पहला मिलन है हॉलैंड देश के अंदर में, जहां पर ढेर सा क्रांतियां होते हैं, खाने पीने के लिए बहुत से सामान होते हैं। हेल्पफुल टेंचस मेट इंफॉर्मेशन खसोंथाइट के बारे में और तरह तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर भी आपको दिया जा रहा है। बच्चों के लिए यहां पर भी ढेर सा एक्टिविटाइट होते हैं। मैंने कहा ना द ईस्ट एंड द ग्रोट्स्ट मिलन सुमर फेस्टिवल जो हॉलैंड देश के अंदर में होते हैं और वो भी साइड पार्क देन हाग शहर के अंदर में। अगर आपको मिलन में जाना है दर मुझे सही कर इन मिलन सुमर

भी एक ही मिलन में मिलन साउथ पार्क में मिलन सुपर फेस्टिवल द एर्स्ट एंड द ग्रोटस्ट सुनो वालों आपको खबर किया जा रहा है हर एक इंफॉर्मेशन के लिए मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए ओक फोर क्राम फरहूर सैन नो एंकल प्लेकन जब भी आप कोई भी सामान बेचना चाहेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे लोगों को और आप एक क्राम लेना चाहेंगे स्टैंप लेना चाहेंगे तो जरूर मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए।

पर रिक्लाम जरूर आप सुनते ही रहना। 11 बजे मिलन समर फेस्टिवल का रिक्लाम पेश होगा, द ईस्ट एंड द ग्रोटसे मिलन Den Haag Zuiderpark में मुलाकात जरूर वहां पर होगा। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा, फिल्म का नाम तकदीर। अलमेर शहर के अंदर में भी बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। इसी तरह से कैलाश भी हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम रोजाना सुनते हैं और मांग किया है ये

तेरी ही याद में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर गाना को मांग करने वाली थी वेल्थोवन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारा प्रोग्राम दया बे प्लस द्वारा भी प्रोविंसी साउथ होलांद में सुनाई देता है। बहुत से शहर होते हैं प्रोविंसी साउथ होलांद में जहां पर दया बे प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। ऐसे है कि सुतमेर शहर के अंदर में भी दया बे प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में। और सुतमेर शहर के अंदर में रहती है नेहा और नेहा ये गाना सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम में। आशा भोसले प्रोग्राम में समाजी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। फिल्म में काम किया है धर्मेंद्र दलित धर्मेंद्र सुपरस्टार धर्मेंद्र ने काम किया है।

0: समाधि फिल्म का नाम। आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गए और सुतमेर शहर की रहने वाली ये नेहा ये गाना आज की ये प्रोग्राम में बांग किया जो आप सभी सुनवलुखी सेवा में बस पेश की गए है। शूटिंग पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। आज जुलाई महीना नए महीना का पहला तारीख है तो खासतौर पर आज जबकि जुलाई महीना का पहला तारीख है तो इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश एक खास गाना आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए बस मांग किया है आज की प्रोग्राम में। आज जबकि पहला तारीख है तो किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पहला तारीख उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: सुहाना आज पहली तारीख है दिन

काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना आज पर।

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं।

क्या गाना चॉइस किया, इंडिया भारत देश नोएडा की रहने वाला अरुणेश का मांगे हुए गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई पहली तारीख फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। खुश है सारा जमाना आज पहली तारीख है, 1 जुलाई है, तो इसी खास उपलक्ष्य पर ये गाना आप सभी सुनने वालों के लिए इंडिया भारत देश से अरुणेश ने मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे आज के प्रोग्राम में रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश किया जाएगी द माइटी मुखीज की आवाज में, और गाना को मांग करने वाला है उत्तराखंड शहर का रहने वाला अभी अभी स्टूडियो की ओर राज ने तार किया है और राज ये गाना को मांग किया है माइटी मुकेश की आवाज में।

माइटी मुकेश की आवाज में यूत्रेख्त शहर का रहने वाला राज का खास मांगी हुई गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। एक बार फिर से आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। फिल्म आप आए बाहर आए, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। तो अब की बार हम आपको ले चलते हैं देहरादून शहर की ओर और देहरादून शहर की रहने वाली मालती आज की प्रोग्राम में भी तार किया है और ये गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। द लेट रविंद्र कुमार का फिल्म आप आए बाहर आए।

0: रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और देनहाग शहर की रहने वाली मालती ने स्टूडियो की ओर तार किया और ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना।
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest is een caravan geschaard en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Sangeet Bhari Station, ye hai Radio SBS. Radio SBS.
0: पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों बस आज की प्रोग्राम में तार किया है रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है अपना अपना गाना मांग करने के लिए। Het is inmiddels 2 minuten over half 11, यानी कि 2 मिनट बाद ही हो चुका है। सर है 10:00, आज बुधवार का दिन 1 तारीख जुलाई है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए आज 1 तारीख जुलाई है, केटी कोटी का दिन है और काफी शहरों में आज केटी कोटी मनाया जा रहा है। और खासतौर पर हर साल की तरह यूट्रेक शहर के अंदर में बड़ा फेल्ट पर केटी कोटी मनाया जा रहा है। मेट हिल फिल क्रांपियस म्यूजिक गाना के साथ केटी कोटी बस मनाया जा रहा है। यूट्रेक शहर के अंदर में भी कुछ सालों से केटी कोटी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मेट हिल फिल क्रांपियस पोडियम प्रोग्राम तरह तरह के प्रोग्राम भी है। सभी को बधाइयां पेश किया जा रहा है आज, जबकि केटी कोटी का दिन है 1 तारीख जुलाई 8 जुली। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाला है आज के प्रोग्राम में मांग किया है न्यू हैंग शहर से हैंक ने तार किया और ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। नीव खैन शहर से हैंक तार किया है और हैंक ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है, यही खबर है कि गाना के लिए अब मत तार कीजिए या तो ऐप कीजिए, हमारा लिस्ट भर गया है। तो आप सभी से गुजारिश किया जा रहा है, जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे तो इसके लिए आप मत तार कीजिए या तो ऐप कीजिए। अभी कुछ सुनने वालों की मांगी हुई गाना और प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त किया जाएगी। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, देखते हैं फिल्म का नाम अभिनेत्री, लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। और दलित शहर की रहने वाली आशा, आशा भी इस खूबसूरत सुहाना मौसम में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है ये गाना आज की प्रोग्राम में।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। और खास तौर पर डेल्फ्ट शहर की रहने वाली खास तौर पर आशा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म अभी नीत रे, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। दो सुनने वालों की मांगी हुई गाना और बस प्रोग्राम में पेश होगा। अब की बार किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा और दीमन शहर से मनोज ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में। मेरे जीवन साथी फिल्म का नाम, वो मेरे दिल की चैन।

दिल की चैन किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दीवन शहर का रहने वाला मनोज ने तार किया और खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 9 मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले एक गाना बस प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में पेश होगा, लता जी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और गाना को मांग करने वाली है आम्स्टरडम साउथ ओस की रहने वाली बेया, श्रीमती बेया, एक गाना लता जी की आवाज में फिल्म अदालत से मांग किया है। अदालत फिल्म का नाम, लता मंगेशकर है, आम्स्टरडम साउथ ओस की रहने वाली श्री

ये प्रोग्राम में मांग करने वाली थी आम्स्टरडम साउटोस की रहने वाली श्रीमती बेया के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश। हस्तों पर गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी आम्स्टरडम साउटोस की रहने वाली श्रीमती बेया के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों।

कीजिए हमारी आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले प्रोग्राम जबकि आपको हम फिर से मौका देंगे गाना मांग करने के लिए, तो आप स्टूडियो की ओर जरूर तार कीजिए, आपकी मांगे हुए गाना हम जरूर पेश करेंगे। एक आखिरी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और वैसे आपको खबर किया जा रहा है कि आज 6 बजे से सेविका नीता की प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, हर बुधवार उनकी प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो जरूर आज शाम में RJ आंशलिक के बाद सेविका नीता के जरिए बस प्रोग्राम सुनते ही रहना। और सेविका नीता आप सभी सुनने वालों के लिए एक गाना बस पेश कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा, पुरानी फिल्म में संगीत होगा प्रोग्राम में, किशोर कुमार

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में, आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये हंसी मजाक का गाना किशोर कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया। सेविका नीटा जो इस वक्त बौद्ध घर में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए न जाने कहां पर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, तो आपको भी खबर किया जा रहा है उनकी प्रोग्राम आज 6 बजे से जरूर सुनते ही रहना और उनकी प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को भी पूरा मौका दिया जाएगी गाना मांग करने के लिए। तो यहां तक पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश की गई, आशा और उम्मीद है आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। काफी सुनने वालों बस इस प्रोग्राम में तार किया प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर के और आइंदा तक काफी सुनने वालों तार किया और अपना गाना को मांग किया। खासतौर पर 8 शहर के अंदर में राज भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, राज भी ये गाना मांग किए थे, लेकिन राज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समय हो गया है, हमें रिक्लाम की ओर जाना है। प्रोबेर फोहन देर बेच फ्रूख द बेल द एप, तो आपके लिए हम गाना जरूर पेश करेंगे। हाँ, आने वाले प्रोग्राम में जब भी गाना पेश किया जाएगी तो जरूर कोशिश कीजिए थोड़ा जल्द तार करने के लिए या तो ऐप करने के लिए। फिर भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है राज जो एंडहोफ शहर के अंदर में हमारा

0: ये प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे मिलते हैं कुछ और भी खूबसूरत नगमे लेकर के इस खूबसूरत सुहाना मौसम में।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

सोनू निगम और सुनील चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है फिर।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो

उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में, ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

सुनने वालों की सेवा में। चलिए कुमार सानू और अलका जी की ओर मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का नाम अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

0: अब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में गाना

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गए, मैंने दिल तुझको दिया। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है radioSBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनों।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो

चले प्रोग्राम में अब की बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो वेव्स पे इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई विशाल मिटुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक फिल्म खुदा हाफिज। फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अपनी बार पेश

करीना भोज की आवाज में ये गाना पेश किया गया, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से। अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है

रेडियो SBS की सरिये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

एक हसीना दो दीवाने फिल्म का नाम दो कदम तुम भी चलो। रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। गाना का बोल है हम बने तुम बने बने हैं बस एक दूजे के लिए।

आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने बस बने हैं एक दूजे के लिए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहरुत्र हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में सालों से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म जमीर की ओर।

आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गाना और फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सबक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलेंगे। अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

The man with the evergreen voice, Kishore Kumar की आवाज में गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म

मैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था रूप देरा मस्ताना। चलिए आज के प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रोबित है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कैन इट ऑलटाइम, सर्फ मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस्त मा द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इज आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म दबंग 3 कम्स खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचनिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी वास आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवान जाने मन. मेरे बाबूला gezongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev is het volgend liedje in het programma Geetum Kelleher.

तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंगा डोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस गज़ल दूर सोनू निगम एंड अल कयाचनिक क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाग गज़ल दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता। हमारा साथ होगा 9 बजे तक।

आपको रिएक्शन देना हो और कोई गीत सुनना हो तो आप जरूर तार कीजिए। तार का नंबर है 0832 66 66 11।

हाँ सुनो, अब हम आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर और आपको सुनाएगी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथ दे रहा है किशोर कुमार। फिल्म आंधी से निकाला है ये खूबसूरत सा गीत, आप जरूर सुनते रहना।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में और सादिया किशोर कुमार. फिल्म का नाम है आंधी. इस बार आप सुनिए रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी. फिल्म का नाम है आधा दिन आधी रात.

फिल्म बॉम्बे के बाबू और आपको सुनाई द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और साथ दिया रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले फिल्म कॉलेज गर्ल।

Savage Girl, I Love You. किशोर दा की आवाज में ये और द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉलेज गर्ल। इस बार आप सुनिए चौधरी का चांद। फिल्म का नाम है चौधरी का चांद।

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले की आवाज में सुनने वालों आपने सुना फिल्म चौधरी का चांद, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराया। और आपको सुनाएंगी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथियों।

अंदाज मेरा मस्ताना द नाइट गिल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथियों के आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराए।

0: माइटी मुकेश की आवाज में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर
1: तो कहाँ खो गया
0: और फिल्म सारंगा से आपने सुना।

खाक हो गया बालम मतवारा। फिल्म सिंगापुर, फिल्म सिंगापुर, और आपको सुना रहे हैं द नाइटिंगेल ऑफ

0: में
1: भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में सुनने वालों, आपने सुना फिल्म संजोग, 1961 का फिल्म है ये फिल्म घर।

माइटी मुकेश के वास में सुनने वालों आपने सुना फिल्म चार दीवारी। इसी फिल्म से निकाला है ये दूसरा गीत, आपको सुनाएगी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चार दीवारी। हम आपको ले चलते हैं फिल्म छाया की तरफ और आपको सुनाएगी तलत। तलत महमूद के आवाज में

0: आंखों में मस्ती शराब की,
1: जुल्फों में रातें शबाब।
0: आपको सुना रहे तलत जी,
1: जाने आई कहां।
0: और फिल्म छाया से निकाला है,
1: मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है, आंखों में मस्ती शराब की।
0: रिश्ते, हाँ सुने वाले रिश्ते वो है जो अपनेपन का एहसास देता है। एंडहोवन शहर से गीत मांगा है श्रीमान।
2: मस्ती लेकर मस्ताने आए, हट जाओ दीवाने आए।
0: हाँ श्रीमान हैंग महावीर
2: मस्ताने आए।
0: इस प्यार भरा गीत खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए मांगा है।
2: चले कहां
0: फिल्म

हट जाओ दीवाने आए, और आपको सुनाए द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी, साथ दिया है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर, और गीत मांगा है एंथोफ शहर से हैंक महावीर, खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए। फिल्म छाया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।

0: इतना नमुझ से तू प्यार भरा
1: कि मैं एक बादल आवारा।
0: तलत जी की आवाज में फिल्म का नाम है छाया।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और किशोर दा के वास में फिल्म के नाम है गाइड। इस बार हाँ सुनवाला हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है किस्मत।

फिल्म तीसरी मंजिल से आप सुनते हैं सुनने वालों और आपको सुना रही है रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

फिल्म तीसरी मंजिल से सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साथ दे रहा है मोहम्मद रफी।

0: हाँ सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूँ आपका सेविका अनीता। लिम्बरक शहर से तार किया है इरेना। मांगी है ये प्यार भरा गजल।
1: गजरे की धार ना मोतियों के हार,
0: पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में
1: कितनी सुंदर हो,
0: फिल्म मोहरा
1: कितनी सुंदर हो,
0: स्पेशल फॉर इरेना।

लिम्बर्ग शहर से इरेन ने तार किया है और ये प्यार भरा गीत मांगा है। फिल्म का नाम है मोहरा। पंकज उदास और सान्ना सरगम के वास में ना कजरे के धार। हाँ सुनने वाला, हम आपको ले चलते हैं उमर की तरफ।

उमर के वॉइस में सुन लो, आपने सुना एल्बम का बोले 14 सुपर सोल्स फोली मद्री। लकी सिंह के वॉइस में छोटी सी ये जिंदगी।

जानी ओ जानी, किरण केदार और साथियों के वास में। हाँ सुनो लो, धीरे धीरे वक्त निकल रहा है, हम आपको ले चलते हैं निजाम के वास में। आप सुनिए

आवाज सुनने वाला आप सुन रहे हैं किरण केदार के आवाज में। हम आपको ले चलते हैं अपना आखिरी गीत की तरफ और आपको सुनाएंगे लकी सिंह और निशा मदारन।

0: सुनने वाला इसी गीत के साथ
1: मुझसे
0: आ गया और इजाजत चाहेंगे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.